सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जप

से भी कम के बेतराम भव समुद्र सुखद नाव के करामला परम शांति परम निदान दिव्य राम

नहीं नहीं नहीं रक्षति दुःखकरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखकरणे जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविं